खजाना। गुरु नानक ने साड़ी झोली विच पाया, सानू इस अनमोल खजाने दी पहचान हो जावे। वाहिगुरु मेर करे इस अनमोल खजाने तो असी लाभ लै सकीए। सतसंग जी, जपजी साहब दी इतनी महानता, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जदों गुरु अंगद देव जी दे हिरदे दे विच अपनी जोत टिकाई है, अपना रूप बख्शिया है, एक बारी प्यार ना लाखो सतनाम। सतसंग जी, जदों गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद देव जी दे हिरदे विच जोत टिकाई, अपना रूप बख्शिया, कुछ बचन भी कीते,

0: रुत आई, रुत आई।
1: और रब नाल गल्लां करानियां बहुत फर्क है। तीसरी वड्याई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की विशेषता आई, जड़ी आप जी ने पिछले वीरवार गुरु ने सेवा लई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब किधरे भी हौ नहीं, हौ नहीं। नानक सब, नानक दवाना,

प्रभु की जरा गल सुना दे, संसार के विकारा के बंधना तो जरा बचावे। है कोई ऐसा सज्जन मित्र, है कोई ऐसो हमरा मीत, सकल समग्री जियो हियो दियो अर्पो अपनो जीत, ओदे नाल पक्की सांझ पां। श्लोक वारा ते वधीक पढ़ने आ, साहिबा ने किया जे

कुछ पंडिता ने बहस की थी। कहने लगे महाराज असी मत्थे ते टिक्का लाने गंगा किनारे बैठ

उसने बड़े तरले लए। भोजन छड़ के ना जाओ, आज खुशी दा दिन है, मेरे घर लड़का पैदा होया। कहन लगे कुछ भी होवे, असा भोजन नहीं छकना।

कहने लगा मेरे घर बच्चे ने जन्म लिया, ब्राह्मणा ने प्रशादा नहीं छकिया, कहंदे ने तेरा घर सूतक वाला। ए दुखी बैठा सी, किसी ने कहा दुखी ना हो, इत्थे तन गुरु

जेड़ी विचार करनी है बैठ के करो, क्योंकि विचार बह के हुंदी है, शांत मन नाल हुंदी है, तलखी नाल नहीं। बैठो, अपनी गल सुनाओ।

बजाज, गंधर्व, तुरक, हिंदू नाम वक् हैं, पहरावे भी वक् देश भी वक् और इन चीजों का असर इंसान से होंद। पर सतगुरु जी कहते हैं अगर आप मन विचार करिए तो सानू किसी फर्क नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा?

अल्लाह अपेक सोई कुरान ओ कुरान ओही हिंदू कुरान पढ़ दे मुसलमान कुरान पढ़ दे मुसलमान अल्लाह नु याद कर दे हिंदू राम नु याद कर दे ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कह रहे ने अल्लाह दा नाम लैण वाले है कुरान शरीफ पढ़न वाले है मुसलमान नु ए उपदेश हिंदू नु की उपदेश ऐ पुराण पढ़न वाले हिंदू ऐ राम नु याद करन वाले हिंदू अपने मन विच ए विचार कर एक बंदा मसीत विच बह के निवाज पढ़ता है वो अपने अल्लाह नु याद करता है एक ब्राह्मण मंदिर विच बह के पूजा करता है वो अपने परमेश्वर नु याद करता है टंग दोनों दे अलग ने एक निवाज पढ़ता है एक पूजा करता है पर ए सोचे है दोनों दा मकसद की है मुसलमान अल्लाह नु याद कर रहे है हिंदू अपने राम नु पिया याद करता है मकसद दोनों दा

खत्री ब्राह्मण शूद वैस और हिंदू और मुसलमान दो वटिया कौमा और दो नादाई झगड़ा सदियां तू चलिया आ रहे है। पर गुरु नानक दे घर दा उपदेश की है कि जेड़े लोग रब दे नां ते लड़दे हन ओ पुल्ले और पटके हुए लोग हन। भाई साहब जी बयान कर दे, चार वर्ण चार मजहबां

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते। मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने, अगे भाई साहब की कहते हैं।

सच किनारे रह गया, सच एक पासे रह गया। ब्राह्मण और मुलाने आपस विच पै लड़दे मरदे ने। भाई साहब जी कह रहे ने, अगर इंसान सच नू ना छड़े, सच पल्ले रखे ते कदी भी

इस पौड़ी दे विच भाई गुरुदास जी ने इस्लाम धर्म दा जो असूल है उहदे बारे दस्या कि मुसलमान वास्ते रोजे ईद निवाज जरूरी इन्हां दे पीर पैगंबरां दा ए उपदेश। पर जिस वेले मुगलां दा राज होया हिंदुस्तान ते तां औरंगजेब जिहड़ा कि एक जालम बादशाह सी उसने ए हुक्म कीता सी कि हिंदुस्तान विच हिंदू

इतने पाप कि सच लभदा नहीं सी। राजे जुलमी हो गए, वजीर पाप कमान लग पए, अपने भले वास्ते अपने फायदे वास्ते लोकां नू लड़ाना, लोकां दा नास कराना और आप खुश होना। भाई साहब जी कह रहे

चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। ऐ मनुख हृदय रूपी वेड़े विच परमाता परमात्मा रूपी नाम दा जे तू चानना कर लवे, अज्ञानता रूपी हनेरा हमेशा हमेशा ले खत्म हो जाना। जे परमात्मा रूपी नाम दा तू हृदय रूपी वेड़े विच चानना कर लवे, चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। आओ आपा मिल के इन्हां तुकां नूं पढ़िए, कोई रसना खाली नहीं।

ए पावन पवित्र शब्द आसा महला पहला धन गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया, जिस शब्द अंदर सतगुरु सानू उपदेश देते हुए एक गल समझा रहे ने। कहते ने हे मनुख हे इंसान जोत वेख जात ना पुछ, क्योंकि साडा संबंध जोत नाल है जात नाल नहीं। जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे जुड़ना ते किते रहे है असी टुट जावांगे, क्योंकि जात तोड़दी है। जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे जुड़ना ते किते रहे है असी टुट जावांगे, क्योंकि जात तोड़दी है जोत जोड़दी है। दोनों गल्लां दा ख्याल रखना। जोत पुछण करके निकटता आउंदी है, जात पुछण करके मनुख मनुख तो दूर हो जाता है। हुण ये बचन सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने आख्या नहीं करके दिखाया, जानो जोत ना पूछो जाती, जोत वेख पाई जात ना पूछ, क्योंकि जात ने हमेशा तोड़िया जोड़िया नहीं, ते जड़ी जोत है वो एक कर देती। हुण सतगुरु उपदेश देंदे हुए समझा रहे ने कुछ गल्लां आपदी चोली पावां।